0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPC

0: आर आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் பண்பலை 102.6.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நிலைப்பண்பலை 102.6.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉग इन करें।
2: காற்றலைகளில் இசை சாமரம் வீசி கொண்டிருப்பது நெல்லையின் இசை களஞ்சியம், ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் பண்பலை 102.6.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: வர்ணஜாலமாய் இது உங்கள் ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் பண்பலை 102.6.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நிலைப்பண்மலை 102.6.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
0: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉग इन करें।
2: வர்ணஜாலமாய் இது உங்கள் ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் பண்பலை 102.6.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: பக்தி மனம் பரப்பும் ஆன்மீக வேளை, இது பக்தி மாலை.

0: கருந்தேள் கண்ணாயிரம் படத்திற்காக ஒலித்த பாடல்களை பாடியவர்கள் சதன், மனோரமா, பி. சுசீலா குழுவினர், எஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் ஆகியோர். கேட்ட நிகழ்ச்சி நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மொஹம்மத் ஜுபேர். राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद

0: और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अड्डी ग्रुप की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत और बहुआयामी साझेदारी पर बल दिया। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आर एन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिनभर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने वर्ष 2026 में पराली जलाने की घटनाओं को खत्म करने की तैयारी की समीक्षा बैठक की। इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आकाशवाणी के 90 वर्ष के इस स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 से होगी। ये दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न होगी। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। The nation yesterday saluted the courage, commitment and supreme sacrifice of the armed forces on the first anniversary of Operation Sindoor. On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. In their message on the occasion, the President, Vice President and Prime Minister described Operation Sindoor as a landmark expression of country's uncompromising stand against terrorism and threats to national security.

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
2: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को

0: औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आर एन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वैत्री कड़गम यानी टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 से होगी। यह दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक RBI बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न होगी। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशक जोखिम कम करने वाले प्लेटफॉर्म IRRA का उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। सेबी ने कल जारी बयान में बताया कि शेयर बाजारों की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया क्योंकि प्लेटफॉर्म की संरचनात्मक रूप से आवश्यकता नहीं रह गई थी। ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इंग्लैंड में 136 परिषदों की करीब 5000 सीटों और 6 मेयर पदों के लिए वोट डाले गए। ये 2024 के आम चुनाव के बाद से सबसे बड़ा चुनावी आयोजन है। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बारिश से बाधित मुकाबले में 213 रनों के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। आज नई दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar. The nation yesterday saluted the courage, commitment and the supreme sacrifice of the armed forces on the first anniversary of Operation Sindoor. On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. In their messages on the occasion, the President, Vice President and Prime Minister described Operation Sindoor as a landmark expression of country's uncompromising stand against terrorism and threats to national security. President Draupadi Murmu called Operation Sindoor as a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. President Murmu said the nation salutes the indomitable bravery, sacrifice and professionalism of our soldiers. Vice President C.P. Radhakrishnan termed Operation Sindoor as a defining moment when India responded firmly to terror forces and terror-sponsoring states attempting to disturb the peace, unity and sovereignty of Bharat. In his message, Prime Minister Narendra Modi said the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. Mr. Modi said the Indian Armed Forces displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation. He said the forces gave a fitting response to those who

0: இதுவரை பொங்கும் மங்களம் நிகழ்ச்சியில் கோலியேரி ஜி வினோத்குமார் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்டீர்கள். கொரக்கந்தண்டலம் எஸ் திருநாவுக்கரசு அவர்கள் தவில்.
1: தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
3: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
2: विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिमी सिबी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच सशक्त तथा बहुआयामी साझेदारी पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत के शून्य सहिष्णुता की नीति को दोहराया और आतंकवाद के खिलाफ नॉर्वे के सहयोग की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात

0: निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में स्थानीय तथा क्षेत्रीय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इंग्लैंड में 136 परिषदों की करीब 5000 सीटों और 6 मेयर पदों के लिए वोट डाले गए हैं। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया है। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The Governor of West Bengal, R.N. Ravi, dissolved the Legislative Assembly of West Bengal yesterday. The new Chief Minister of the state and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kabir Guru Rabindranath Tagore. In Keralam, the decision on the Chief Minister will be announced by the Congress High Command in New Delhi after consulting reports submitted by AICC observers. KPCC President Sunny Joseph said a resolution empowering the AICC President to select the Congress Legislative Party leader was unanimously adopted at the Legislative Party meeting held in Thiruvananthapuram yesterday. KPCC President Sunny Joseph said the observers who will return to Delhi will submit their findings to the national leadership of the party. In Assam, the BJP-led NDA government will take oath for a third consecutive term on the 12th of this month. A high-level preparatory meeting regarding the swearing-in ceremony was held in Guwahati yesterday in the presence of senior BJP leaders. Addressing a press conference after the meeting, state BJP President Dilip Saikia informed that the oath-taking ceremony will be held at the Veterinary College playground at Khanpara in Guwahati. He said Prime Minister Narendra Modi will attend the event as a chief guest. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a brainstorming session with officials of Department of Commerce and Department for Promotion of Industry and Internal Trade in New Delhi. In a social media post, Mr. Goyal said that discussions focused on boosting exports and investments, unlocking opportunities for aspiring exporters and tapping new global markets. Communications Minister Jyotiraditya Scindia will be on a two-day official visit to Maharashtra from today. The visit will include key engagements relating to the Department of Posts as well as participation in prominent academic and public events in Mumbai and Pune. The Ministry of Communications informed that today Mr. Scindia will inaugurate the Andheri Railway Station sub-post office in Mumbai along with Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. Secretary West in the External Affairs Ministry, C.B. George, represented India at the National Day reception.